0: ছড়া কমিয়ে পানি না দেখতে হাঁকো বাচ্চা হেউনো বাচ্চা হেউনো বিমাকে লাগে মন মাতের টেন্ট পর সে ভাড়া কোড়া মিউনিক লাগাচ্ছে আমার সেম্পানি সম্পূর্ণ সাবান ওটা কে ল্যাউনে ওরা আমার হেঁদে
1: तपाईले त्यति पनि थाहा छैन खड्काजी तपाईले भनेको सम्पूर्ण सामान त 32 रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चैनकोटमा पाइहालिन्छ
2: हजुरहरूको सेवामा सम्पूर्ण नयाँ सामानको साथमा सदरमुकाम चरीकोटमा विवाह व्रतबन्ध सेमिनार सभा सम्मेलन उत्सव पिकनिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रमका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी आवश्यक परे भोजपति तथा शुभ कार्यका लागि अनुभवी तथा दक्ष कुक वेटर मसालजी उपलब्ध गराउँदछौ। यहाँ आवश्यक चाइनिज टेन्ट सायर कुर्सी भाँडाकुँडा कार्पेट म्युजिक सिस्टम बत्ती लगायतका सामानहरू भाडामा पाइनुका साथै हाफ तथा क्याटरिङ पनि गरिन्छ। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्कको लागि कुमार श्रेष्ठ 9852428883 9842228883 र कृष्ण श्रेष्ठ 9864002041
3: बैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरीकोट दोलखा।

समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला की जन पक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ चक्र डीजे वाला है विथ मिस्टर राजीव।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

बेलुकी 7 बजे को हम समाचार में लक्ष्मी को नमस्कार यह समाचार बुलेटिन हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज गजरी सामुदायिक एफएम 94.1 मेगाहर्ज एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ इन्टरनेट में www.hamroradiofm.org/ हम पात्र हमी सुन सकू